0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं शौर्य चौधरी। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड व्हाट अ गोल्डन मॉर्निंग इट हैज बीन शौर्य। और ये सुबह, ये स्वर्णिम सुबह आई है भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम की बदौलत, तो उसके बारे में और दिन अभी तक जो जो कुछ हो चुका है, जो मेडल्स, जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, उन सब का अपडेट हम आपको देंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं उस स्वर्णिम सफलता से, चिकिता तानी पार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में चीन को 238 और 234 से हराया। भारत का स्कोर रहा 238, चीन का 234। 238 का जो स्कोर है वो साउथ कोरिया के साथ जॉइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और इसके साथ ही लगातार दो एशियन गेम्स में इस इवेंट में गोल्ड जीता है भारत ने। और इस जीत के साथ इस एशियन गेम्स में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या हो गई है 7। इसके पहले आज सुबह ही सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था भारत ने। वहीं कंपाउंड मिक्स टीम के सेमीफाइनल में चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया से होगा। और इसके बाद होगा कंपाउंड मेंस टीम सेमीफाइनल, जिसमें कुशाल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम की टिकड़ी दिखाई देगी। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इन तीनों ही इवेंट्स में भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है।
2: एब्सोल्युटली एंड एक्चुअली इंडिया टेकिंग ऑन कोरिया राइट नाउ एज वी go through this update, and it's a brilliant final that's going on right now. India doing really well, so another goal probably loading in compound mixed team. So in compound archery, obviously India are a powerhouse, and as you rightly pointed out, 3 goals up for grabs and we are the defending champions in all 3. So today is looking up since the morning for India. Right now, as we can see, India have shot perfect 10s till now on 80, while Korea are struggling a little bit, they're on 78. Meanwhile, also in squash, the women have reached the semi-finals by defeating Singapore, so another medal loading. There's a very important day today for India, action-packed day, as you rightly pointed out, and we also have LA qualification up for grabs. As we all know, compound mixed team will be making its debut at the Los Angeles Olympics, and whoever wins this match goes through directly as qualifiers for that prestigious Olympics debut. So many things up for grabs here right now.
1: जी, सफलताओं की बात हम कर रहे हैं तो ट्रैप मिक्स टीम के इवेंट में भी केनन चेन्नई और नीरू ढांडा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। वहीं मेंस कयाक सिंगल में प्रद्युम्न सिंह राठौर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। हितेश केवट नहीं कर पाए, वो 14वें स्थान पर रहे। वहीं

0: महिलाओं की कैनल सिंगल में पल्लवी जगताप 8वें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। रीना सेन 9वें स्थान पर रही और क्वालिफाई नहीं कर पाई।
1: And wrestling action has also begun, as we all know. And again, India are a powerhouse in wrestling. And some of the results that have come in, we can tell you right now. And we are doing really well in wrestling as well. Sunil Kumar, of course, he began with a victory in his category. Still early days in wrestling, obviously. A lot of events still left. Sunil lost ultimately to Yoshida Taizo of Japan in the semi-finals. So a good start, mixed start there for India in wrestling.
0: जूडो में अस्मिता ने वियतनाम की हा नॉकची को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर गई हैं। वहीं टेनिस में डी सुरेश का मुकाबला जारी है चाइनीज ताइपेई के चुन सेन सेंग से। पहला सेट सुरेश हार चुके हैं 3-6 से और दूसरा सेट बराबरी पर चल रहा है।
1: राइट एंड सो एज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर अपडेट्स वी मस्ट आल्सो रिमाइंड आवर लिसनर्स दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट Hockey semi-final is also going to take place today. India taking on South Korea again. Los Angeles Olympics qualification are for grabs. So lots happening. Medals up, loading for India. As we can see, India right now in pole position to win the gold medal in the mixed team archery recurve event. So let's see what happens there. Fingers crossed.
0: बिल्कुल।

0: रही हैं, लेकिन उसके लिए पार्क सोलगम को फाइनल में पहुंचना होगा।
1: पार्क सोलगम हैज एक्चुअली एंटर्ड द फाइनल एंड दैट मींस देयर इज अ चांस फॉर अ ब्रॉन्ज मेडल देयर फ्रॉम थ्रू रेपेशाज। Meanwhile, Priya Pangas is actually trailing right now. Let's see what happens. In judo, I think Ashmita has also lost in the quarterfinals. Action coming thick and fast. Lots of things happening here at Aichi Nagoya. But the good thing is India is moving up the medals tally.
0: जी बिल्कुल, मेडल्स टैली में भी भारत ने किया है। इसके अलावा कैनो स्लालम जैसे खेल में भी इतिहास रच रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह जो है वो पुरुषों की कयाक सिंगल के फाइनल में पहुंच गए हैं, वहीं महिलाओं में पल्लवी जगताप विमेंस कैनो सिंगल के फाइनल में पहुंच गई हैं।
1: Great, but all our eyes will be on the hockey action later today as well. As you are also saying that compound men's team semifinals are also going to take place today later in the day, and I think the final of the shooting trap will also be interesting because you know India obviously is a powerhouse in shooting, and this time we haven't done as well as we did in Hangzhou, but a few more medals from shooting will obviously help us, you know, push up that medals tally.
0: बिल्कुल, और स्क्वाश में भी शौर्य हमने पदक पक्का किया है। भारत ने सिंगापुर पर जीत के साथ महिला टीम मेडल पक्का किया है। तन्वी खन्ना ने 3-1 से और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई है। तो इसके साथ स्क्वाश में भी अब एक मेडल आना है। मेडल का रंग क्या होगा वो देखना बाकी है। बिल्कुल उसी
1: तरह प्रिया गंगा इज गोइंग ऑन राइट, हर बाउट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आई थिंक शी इज ट्रेलिंग, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एज वी नो इन बॉक्सिंग, if we reach the semi finals you are assured of a bronze medal, so that way that's a good news for India there. And boxing and wrestling, these combat sports, will obviously provide us with some medals and push us up that medals tally.
0: बिल्कुल, बॉक्सिंग से फिलहाल हमें वाकई मेडल्स की उम्मीद है। लवलीना का मुकाबला जहाँ चल रहा है हांगजो में, इसी कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था शौर्य, तो इस बार बिल्कुल वो मेडल का रंग बदलना चाहेंगी।
1: Of course, and you know, Lavlina is a name we look up to. This time, obviously, Lavlina is really geared up for this Asian Games. She has prepared really well, and we are hoping for that elusive gold medal. She won a silver, as you said, lightly in the last edition of the Asian Games in her category. And in the same category, she's going to take part this time. She's already taking part. She's doing pretty well. She's in form. So we can obviously hope for a gold medal. So that's it for our update for 10:30. We'll be back at 11:30 a.m. for our next update. Lots more medal actions and lots more combat actions from the ring. So bringing that to you will be Mudita and Shaurya at 11:30 a.m. Till then, it's a goodbye. Keep cheering for Bharat.

0: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 के सभी ताज़ा अपडेट्स और खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं शौर्य चौधरी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की शौर्य जो है वो मुक्केबाजी से आई है। लवलीना बोरगोहेन पहुंच गई हैं गोल्ड मेडल बाउट में। लवलीना ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया और इसके साथ ही उन्होंने अपना रजत पदक पक्का कर लिया है। लेकिन इस बार जो हमने पहले भी बात की थी कि वो मेडल का रंग जरूर बदलना चाहेंगी, हांगझाऊ में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा बॉक्सिंग में ही प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई। बॉक्सिंग में एक मुकाबला अभी और होना है जो अगले अपडेट तक हम उसको लेकर के आएंगे, वो है 90 किलोग्राम भार वर्ग में पुरुषों का मुकाबला जिसमें कपिल पोखरिया नजर आएंगे।
1: एब्सोल्युटली, एंड दैट वाज अ वेरी टेंस बाउट देयर फॉर लवलीना। शी हैड टू रियली बैटल थ्रू इट एंड विन बाय स्प्लिट डिसीजन 3-2, एंड दैट शोज द चैंपियंस मेंटालिटी। यू सॉ दैट शी स्लिप्ड ट्वाइस ड्यूरिंग दैट बाउट। शी वाज डिफेंसिव एट मेनी जंक्चर्स, बट इन दैट फाइनल राउंड शी ब्रॉट आउट हर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ अ वेरी स्ट्रांग ओपोनेंट। सो यस, सिल्वर मेडल अश्योर्ड, बट विल बी होपिंग फॉर अ गोल्ड। मीनवाइल, अनदर टीम दैट्स इन द फाइनल is in shooting mixed trap, where Neeru Dhanda, of course, she made history by becoming the first individual gold

0: medalist in women's trap for India, the 26-year-old. She has teamed up with Kinan Chennai. And right now, I think India are on top. Yes, Nidhu and Kinan Chennai battling the weathers, battling the elements there, because, you know, inclement weather in Japan, and this is an outdoor event, so mixed trap is obviously challenging. But India right now with 24 points, very close right now, but Kinan Chennai and Nidhu Dhanda are first and second right now. They're just battling hard there. They qualified fourth, so hoping for a goal there as well.
1: बिल्कुल, और स्क्वाश का मुकाबला भी जारी है. मेंस टीम क्वार्टर फाइनल में कुवैत का सामना कर रही है. अभय सिंह, वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार एक बार फिर से खिताब को बरकरार रखने के लिए उतरे हैं. वीर चोटरानी का मुकाबला इस वक्त जारी है बादिर अलमोगरेबी के साथ, और फिलहाल दोनों एक एक गेम जीत चुके हैं, जबकि तीसरे गेम में वीर लीड कर रहे हैं 11-0 से. महिला टीम आज पहले ही क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को हरा कर अपना मेडल पक्का कर चुकी है.
0: Of course, that win against Singapore again assuring another medal from squash where we are doing pretty well. All the big guns are there from the squash team, the stars Joshna and Anahat etc. Right, so let's take you to Kasugai Country Club Estate where the golf events have begun. Men's individual stroke play round 1 is already completed, and Saptak Talwar 4 under par is in the third position. And you know, we do well in golf in multi-nation tournaments, you know, and back in the 23rd position is Veer Ahlawat. He is 1 over par, but Saptak is doing really well. Men's team, they are 3 under par. The team in combined, they are in the joint 5th position. Meanwhile, the women's events are also going on, where I think Diksha Dagar is also taking part, so hope from there. But the, obviously the story today is archery, you know, Okazaki, Chuo, Sogo Park, where 2 gold medals have come, a world record has come in compound women's and compound mixed team event. What's going on there, Mudita?
1: जी बिल्कुल, 2 गोल्ड मेडल के साथ आज कंपाउंड आर्चरी टीम ने धमाल मचा रखा है. और फिलहाल जो है, अब जो मुकाबला है वो कंपाउंड मेंस टीम का है, सेमीफाइनल मुकाबला है. कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम के साथ भारत अपना खिताब डिफेंड करने की यहाँ भी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में इन तीनों में भारत ने
0: ऑल 3 इवेंट्स, यस वी वन गोल्ड, आई थिंक वी वन 5 इन टोटल, बिकॉज़ इंडिया इज लाइक अ यू नो मशीन इन कंपाउंड आर्चरी. रिकर्व ऑब्वियसली वी हैव स्टिल सम वे टू गो, वी आर प्रीटी गुड देयर एज वेल, बट इन कंपाउंड आर्चरी दिस इज फैक्ट्री लाइन. यू नो साहिल जाधव, आर्चर्स आर जस्ट कमिंग अप, एंड यू नो इट्स लाइक कोरिया इन रिकर्व फॉर एग्जांपल. सो वी आर ब्रिलियंट एट कंपाउंड एंड वी रियली होप दैट द फ्लैग कीप्स flying high at the Okazaki Chuo Sogo Park. The semi-final is loading there. A few other bits of news. Obviously, Ashmita Dey lost her quarterfinal bout in judo. And in men's singles tennis, I think Sumit Nagal is leading against Sergei Fomin. He won the first set pretty comfortably in the third round, so he's probably heading to the next round. Lots more action coming up. We are running out of time right now. Medals tally. In China, obviously on top. Humongous 259 medals, 144 goals. India back in the 9th spot with those 2 goals. They've climbed up to 8 goals, 56 medals. That's all the time we have for this update. This is Shaurya and Mudita bidding you goodbye. Cheer for Bharat and join us again at 12:30 p.m.
2: ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரம் கேட்டீர்கள்.

0: सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंग यू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई थी। स्क्वाश में मेंस टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में कुवैत के साथ मुकाबला कर रही थी। अभय सिंह ने अम्मार अल तामिमी से 3-0 से मुकाबला जीता, वहीं वीर चोट्रानी बादेर अल मोगरेबी से 3-1 से मुकाबला जीत चुके हैं। इसके पहले महिला टीम आज क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को हराकर पहले ही मेडल पक्का कर चुकी है। टेनिस की बात अगर हम करें तो सुमित नागल एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राउंड ऑफ 16 में उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3 6-2 से उन्होंने हराया। फोमिन के खिलाफ इसके साथ ही उन्होंने अपना हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-0 कर लिया है। मेडल पक्का करने से अब सुमित केवल एक जीत दूर हैं। पुरुष सिंगल के तीसरे राउंड में दक्षिणेश्वर सुरेश चाइनीज ताइपे के चुन सिन सिंह से 3-6 4-6 से हार गए थे। और वहीं मेंस डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी का मुकाबला जारी है। चीन के फ्यूमिंग जियांग और तियान हुई झांग से भारतीय जोड़ी पहला सेट 7-6 से जीत चुकी है और दूसरा सेट वो लीड कर रही है 4-3 से। स्पोर्ट क्लाइंबिंग में भारत के लिए एक और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। दीपू मल्लेश गौड़ा ने स्पीड 4 क्वालिफिकेशन राउंड में 5.09 सेकंड के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जो उनके पिछले 5:03.09 के रिकॉर्ड से बेहतर है। और उन्होंने इससे पहले का रिकॉर्ड इस साल की शुरुआत में चीन में वर्ल्ड क्लाइंबिंग एशियन चैंपियनशिप में बनाया था। जोगापूर्ति ने भी कल महिलाओं की स्पीड क्लाइंबिंग में 7:28 के समय के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। गोल्फ में सप्तक तलवार ने गोल्फ मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में अपने एशियन गेम्स 2026 कैंपेन की शुरुआत शानदार 4 under 66 के साथ की और राउंड वन के बाद तीसरे नंबर पर रहे, जो जॉइंट लीडर्स से सिर्फ 1 stroke पीछे थे। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधु दोनों ने 1 over 71 का कार्ड खेला और 23वें नंबर पर रहे। भारतीय गोल्फर 1 अक्टूबर को राउंड 2 के लिए वापसी करेंगे। और हमारी नज़रें बनी हुई हैं आर्चरी के मुकाबले पर भी। बॉक्सिंग में हालांकि हार गए हैं भारतीय बॉक्सर कपिल पोखरिया उज़्बेकिस्तान के तुराबे खबीबुल्लाएव के साथ। आर्चरी पे हमारी नज़र बनी हुई है। इसके अलावा आने वाले मुकाबलों में अब हमारी नज़र रहेगी विमेंस हॉकी के सेमीफाइनल पर भी। तो इस वक्त की अपडेट्स के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक 1:30 पर हम फिर से हाजिर होंगे नई और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।
1: நேர்களே, கேட்டீர்கள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரத்தினை.

2026 की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूं मुदिता, और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत मेडल टैली में एक और पायदान ऊपर चढ़कर अब सातवें स्थान पर पहुंच गया है। एक और गोल्ड हासिल किया है भारत ने, और खास बात यह है श्रोताओं कि आज का हर अपडेट हमने शुरू किया है गोल्ड के साथ, स्वर्णिम सफलताओं के साथ। तो मेडल टैली में भारत अब 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर है। शुरुआत करते हैं हम आज के इस वक्त के गोल्ड मेडल के साथ। भारतीय पुरुषों की कंपाउंड टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साहिल जाधव, कुशल दलाल और टी गणेश मणिरत्नम की टिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-237 से हराया। पहले राउंड में भारतीय तीरंदाजों ने 2-9 लगाए थे, लेकिन आखिरी 18 तीरों में परफेक्ट 10 स्कोर किया। इसके पहले सेमीफाइनल में कोरिया पर 236-229 से जीत के साथ फाइनल में भारत ने प्रवेश किया था, और इस तरह कंपाउंड टीम इवेंट में भारत ने क्लीन स्वीप किया है, जिसमें महिला टीम और मिक्स टीम के गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। तो आज का दिन बेहद शानदार रहा है भारतीय तीरंदाजों के लिए, 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं उन्होंने। हम बता दें कि साहिल जाधव ने मिक्स टीम और पुरुष टीम में 2 स्वर्ण अपने नाम किए हैं। बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले में कपिल उज्बेकिस्तान के तुराबे खबीबुल्लायेव से हार गए, लेकिन लवलीना पहुंच गई हैं गोल्ड मेडल बाउट में। लवलीना बरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। इसके अलावा परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो कम से कम 3 सिल्वर मेडल पक्के हैं बॉक्सिंग से, हालांकि हम बिल्कुल चाहेंगे कि मेडल का रंग सुनहरा ही हो। इसके अलावा प्रिया घनघस और नरेंद्र बेरवाल ने कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो कपिल का कांस्य पदक मिलाकर कुल 3 कांस्य पदक भारत ने हासिल किए हैं बॉक्सिंग में। इसके बाद स्क्वाश में भी मेंस टीम ने अपना पदक पक्का कर लिया है। भारतीय टीम ने कतर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अभय सिंह अम्मार अल्तामिमी से 3-0 से जीते, वहीं वीर चोटरानी बादेर अलमुगरेबी से 3-1 से जीत चुके हैं। महिला टीम आज सुबह ही क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को हराकर पहले ही अपना मेडल पक्का कर चुकी है। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह सिंगल्स में रजत पदक पहले हासिल कर चुके हैं। टेनिस में मेंस डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी

0: क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई है चीन के फ्यूमिन जियांग और तियान हुई झांग से। कड़े मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 7-6 से जीता, लेकिन दूसरा सेट वो 6-7 से हार गई और तीसरा सेट 8-10 से। लेकिन सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में राउंड ऑफ 16 में उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन को सीधे सेटों में उन्होंने 6-3, 6-2 से हराया और फोमिन के खिलाफ उन्होंने अपना हेड टू हेड रिकॉर्ड भी 3-0 कर लिया है और अब मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर हैं सुमित नागल। इससे पहले पुरुष सिंगल के तीसरे राउंड में दक्षिणेश्वर सुरेश चाइनीज ताइपे के चुन सिंह सेंग से 3-6, 4-6 से हार गए। यूके भामरी और डी सुरेश की जोड़ी अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले अब खेलेगी और मिक्स डबल्स में यूके भामरी और ऋतुजा भोसले दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद आज जिस मुकाबले पे हम सब की निगाह है वो है विमेंस हॉकी का मुकाबला, जिसका पहला सेमीफाइनल चल रहा है इस वक्त चीन और जापान के बीच और दोनों ही टीमें अभी तक कोई गोल नहीं कर पाई हैं। दूसरा सेमीफाइनल जिस पर हमारी नज़र है वो होगा भारत का रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो हॉकी के इस मुकाबले पर हम सब की नज़र अब रहने वाली है। तो इन सब खबरों के साथ ही जो हमने फिर से बताना चाहेंगे आपको कि भारत अब मेडल टैली में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। आज 4 गोल्ड हासिल किए भारत ने, 3 हासिल किए उसमें से उन्होंने कंपाउंड आर्चरी से हमने, और उसके अलावा 1 हमने हासिल किया ट्रैप शूटिंग के मिक्स टीम इवेंट में। तो इसके साथ ही 10 गोल्ड हो गए हैं अब भारत के हिस्से में, 21 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 59 मेडल हैं और भारत है 7वें पायदान पे। कल सुबह की शुरुआत हमने की थी भारत के 12वें स्थान के साथ, शाम होते होते भारत पहुंचा था 10वें पे, आज सुबह 8वें और अब है 7वें स्थान पर भारत। तो हमारा ये सिलसिला अपडेट्स का आपके साथ जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अगला अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर होंगे ठीक 3:30 पर। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
1: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
1: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
1: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
1: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
1: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी,
1: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
1: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी,
1: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी,
1: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
1: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी,
1: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
2: जी,
1: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
2: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
1: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
2: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
1: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
2: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
1: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
2: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत

0: बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
1: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका मिला।
0: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
1: बिल्कुल, श्रोताओं अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
0: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
0: जी।
1: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
0: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
1: वो क्या?
0: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
1: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
0: जी।
1: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
0: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
1: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
0: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जाने।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए।
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओ अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: आपने सुना ये कार्यक्रम? पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिक

0: को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
1: सत श्री अकाल चाचा।
2: सत श्री अकाल।
1: छुट्टी पर आए हो?
2: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
1: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
2: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
1: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
2: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
1: बंदूक भी चलाते हो?
2: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
1: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
2: हाँ।
1: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
2: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
1: जी चाचा।
3: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
0: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
3: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
0: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
3: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
0: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर ये तो हमारा काम है।
4: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
4: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश देना। हाँ पॉलिश दे। अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
3: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास

0: युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
1: एक मिनट मान सिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ लेता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना?
2: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
2: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
2: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
0: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
3: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
1: सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया, तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
3: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं, अपने विमान को नीचे लाइए।
1: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
2: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया।

0: और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, और भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
2: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखो, सेखो 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेख हों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: நேர்களை கேட்டீர்கள் தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கும் விளம்பரதார நிகழ்ச்சி.

0: 4:02. நேர்களை கேட்கலாம். ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரத்தினை.
1: ஏசியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आर लिसनर्स. एशियन गेम्स की ताजा अपडेट्स लेकर एक बार फिर से वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं. मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं अनुपम पाठक. 30 सितंबर का दिन अ गोल्डन डे फॉर इंडिया, स्वर्णिम सफलताओं का दिन. 4 गोल्ड मेडल हासिल किया आज भारत ने, 3 कंपाउंड आर्चरी में मेन्स टीम, विमेन्स टीम और मिक्स टीम ने, और 1 ट्रैप शूटिंग में मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और काइनन चिनाई ने.
3: भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में महिलाओं का सेमीफाइनल मैच बस अभी अभी शुरू हुआ है, लगभग 50 सेकंड पहले. लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर जो हम आपको देना चाहते हैं. ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत के सुनील कुमार, जिन्होंने आज अपनी पहली भिड़ंत जीती थी, अगले में वो जापान के ताइजो योशिदा से हार गए थे. लेकिन जो किस्मत होती है ना, योशिदा आगे बढ़े तो सुनील को एक मौका और मिल गया रिपेचेज का, और रिपेचेज में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अभी अभी जस्ट खत्म हुए मुकाबले में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 10-0 से बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कुश्ती लड़ी इसमें, और टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से परास्त किया. और भारत के लिए आज जो पदकों का सिलसिला मुद्दता लगातार चल रहा है ना, उसमें एक पदक और जोड़ लीजिए, सुनील कुमार का ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक ग्रीको रोमन कुश्ती 87 किलोग्राम भार वर्ग में.
2: जी बिल्कुल. लेकिन वहीं महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपिशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गईं.
3: यहां पर एक बात मैं बता दूं आपको, रेपिशाज एक आम खेल प्रेमी जानता ही नहीं था 2008 के पहले, जब सुशील कुमार भारत के, उन्होंने जो पहला कांस्य पदक जीता था इसी के बाद, और फिर सब लोग जान गए थे कि रेपिशाज होता क्या है.
2: जी, और अब बात शूटिंग की. 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन्स इंडिविजुअल के

0: क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे। आज पहला दिन था इस क्वालिफिकेशन राउंड का, कल होगा दूसरा दिन। और शूटिंग में आज भारत ने शानदार सफलता हासिल की एक और स्वर्ण पदक के साथ। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चिनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन से आगे रहकर गोल्ड हासिल किया। भारतीय शूटर कायनन चिनाई ने एशियन गेम्स में जाने से पहले आकाशवाणी से विशेष बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे हैं। और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एट लीस्ट इन द कैंप्स एंड इन द प्रिपरेशन टू द गेम्स दैट एवरीबडी इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो पॉजिटिव आएगा।
2: आपने इनकी बात सही सुना होगा, कितने सौम्य हैं, ये बात अलग है। उनकी शॉट गन बहुत गरजती है। पिछले गेम्स में भी उन्होंने मेंस गोल्ड पाया था टीम के साथ और व्यक्तिगत कांस्य पदक पाया था। बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में भी, इंग्लैंड से पढ़ाई की है और इनके खून में है शॉट गन, क्योंकि इनके पिता 2 बार राष्ट्रीय ट्रैप चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं टेनिस की।
0: जी, यूकी भामरी और डी सुरेश की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई के चेन जुई हो और यूसीओ सू की जोड़ी से मुकाबला कर रही है। पहला सेट बड़े कड़े मुकाबले में 6-7 से भारतीय जोड़ी हार गई है, लेकिन दूसरा सेट 1-1 की बराबरी पर चल रहा है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मेंस डबल्स में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई थी, लेकिन सिंगल्स में सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर है।
2: और उम्मीद करें ये मेडल भी पक्का होगा। लेकिन सिर्फ डॉक्टर की बात करते हैं, इसमें क्वाड्रेंट के मुकाबले थे आज, महिलाओं में भी पुरुषों में भी प्रारंभिक मुकाबले हैं। दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं, महिलाएं हार गईं और वियतनाम से हारी और फिलीपींस से हारी 2-0 और 2-1, यानी 0-2 और 1-2 के अंतर से। पुरुष जीत गए हैं, उन्होंने लाओ पीपल्स रिपब्लिक को परास्त किया है 15-9, 15-8, यानी 2-0 की जीत के साथ वो अपना ये मैच जीत चुके हैं।
0: और अब हॉकी का मुकाबला, भारत का दूसरा जो सेमीफाइनल अब होने जा रहा है महिला हॉकी का, उसमें भारत का सामना होगा दक्षिण कोरिया से। पहला सेमीफाइनल चीन ने जापान को कड़े मुकाबले के साथ हरा दिया है। अगले अपडेट में
2: जी, लेकिन ये आपको बता दें बस 5 मिनट हो चुके हैं और अभी भी कोरिया का एक जबरदस्त हमला था जिसको भारत ने नाकाम किया है।
0: जी, तो ठीक 4:30 पर हम अगले अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: நேர்களே, கேட்டீர்கள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரத்தினை.

0: நேர்களை தொடர்வது ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம்.
1: ஏசியன் கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
2: बीसवें एशियाई खेलों पर इस ताज़ा अपडेट के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा है। बार बार आपको बताने का मन होता है, क्या पता इसके मन होता है, क्या पता इसके पहले आपने ना सुना हो, सुना हो तो दोबारा खुश हो जाइए। भारत ने आज बहुत सुनहरी सफलताएँ प्राप्त की, 4 स्वर्ण पदक आ चुके हैं और एक और खेल जिसमें हमें स्वर्ण पदक की हमेशा उम्मीद होती है क्योंकि हमारी रग रग में बसता है, हॉकी। आज महिलाएं खेल रही हैं, भारतीय लड़कियां इस समय मैदान में हैं, सेमीफाइनल चल रहा है, तीसरा

0: इस समय क्वार्टर चल रहा है। अभी तक मुकाबला दक्षिण कोरिया के विरुद्ध 0-0 है। इसके पहले भारत की लड़कियों ने बहुत ताकत के साथ, बहुत दमखम के साथ, बहुत एक तरफा मैच खेले थे और जीते थे, लेकिन आज इस सेमीफाइनल में सचमुच हमें बहुत जुझारू हॉकी देखने को मिल रही है। स्थिति अभी तक यह है कि भारत का पोजीशन लगभग 60% है, 9 पेनल्टी कॉर्नर मिस चुके हैं लेकिन अभी एक को भी भुना नहीं पाए हैं, और दक्षिण कोरिया पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा है और उसके जवाबी प्रत्याक्रमण का सामना भी करना पड़ता है भारत को। फिलहाल अभी वक्त है, देखते हैं क्या होता है।
1: जी, और रेसलिंग की एक बार हम फिर से बात करेंगे। मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनसन को 9-0 से हराया। और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इसके पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं।
0: बिल्कुल, और पिछली बार की तरह इस बार, पिछली बार हमें कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था और इस बार उम्मीद करते हैं स्वर्ण पदक भी आना चाहिए। जिस हिसाब से इस जब खेल अपने उत्तरार्ध की ओर आ गए हैं, बल्कि कहना चाहिए बहुत अधिक समय नहीं बचा है, बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो भारतीय टीम बिल्कुल पूरे कहना चाहिए एकदम पुनर्जीवित सी दिख रही है। आज भारतीय दल ने 4 स्वर्ण पदक पाए हैं और अभी बहुत उम्मीदें हैं। अभी कंपाउंड आर्चरी में बहुत कुछ आना बाकी है, तो तैयार रहिए, अपडेट्स के साथ रहिए और जहाँ जहाँ से आप सकते हो 20वें एशियाई खेलों के बारे में जानते रहिए।
1: जी, टेनिस से अच्छी खबर नहीं है। मेंस डबल्स में यूकी भामरी और डी सुरेश की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई के चेन जुई हो और यू सी ओ सू की जोड़ी से 6-7, 3-6 से हार गई है। इसके पहले अनिरुद्ध चंद्रशेखर और बालाजी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में हार गई थी और इसके साथ ही मेंस डबल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। अब मिक्स डबल्स में आज यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
0: जी, मिश्रित युगल में जो मैच होना है अभी शेड्यूल्ड है, अभी इसकी शुरुआत होनी बाकी है, लेकिन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का रिजल्ट इस बीच आ गया है। पुरुषों के स्पीड 4 का क्वालिफिकेशन था जिसमें भारत के दीपू मल्लेश 28 वर्ष के हैं, वो क्वालिफाई कर गए हैं और उन्होंने जो 4 प्रयास किए थे उसमें 5.19, हर बार देखना होता है कब से कम समय आपको कब लगा है, तो अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने लेन बी में 5.09 सेकंड का समय निकाला और इसके साथ ही वो कुल 19 लोगों में 11वें स्थान पर रहे और क्वालिफाई कर लिया। कल इसका क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा।
1: जी अनुपम, सफलताओं की बात हम कर रहे हैं लेकिन साथ ही कुछ असफलताएं भी रही हैं। जूडो में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गई हैं। वहीं कैनो स्लालम में मेन्स कयाक सिंगल में प्रद्युम्न सिंह राठौर फाइनल में 6ठे स्थान पर रहे और विमेन्स कैनो सिंगल में फाइनल में पल्लवी जगताप अंतिम स्थान पर रही हैं।
0: और एक बार फिर बता दें कि तीसरा क्वार्टर भारत और कोरिया के बीच में जो मैच चल रहा है वो लगभग समाप्त होने को है। 1:46 बचे हैं, यानी लगभग 3 हिस्सा गेम का हो चुका है, 1 हिस्सा बचा है, लेकिन अभी तक गोल रहित ये मुकाबला चल रहा है। भारतीय टीम कोशिश तो बहुत कर रही है लेकिन कोरिया पूरी ताकत के साथ उनका प्रतिरोध कर रही है और गोल अभी तक तो नहीं होने दिया है।
1: जी, और भारतीय लड़कियों के सफ़र को अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया है तो हम आपको बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो अनबीटन रही हैं। और ज़रा देखिए अनुपम, की उज्बेकिस्तान से 19-0 से, इंडोनेशिया से 17-1, थाईलैंड से 20-1, जापान से 3-1 और सिंगापुर से 7-0 से उन्होंने मैच
0: जी
1: जीते।
0: और स्तर कैसे एकदम से बढ़ता है। इस बीच एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है, भारतीय टीम पेनल्टी कॉर्नर ले रही है और क्या गोल हो गया है, ये लगता है गोल हो गया, बिल्कुल ये गोल हो गया है। कितनी अच्छी बात है। अपडेट का समापन हम इस बात के साथ कर रहे हैं कि भारतीय लड़कियां कोरिया के विरुद्ध 1-0 से आगे हो गई हैं। हमें इंतजार है बस रेफरी के इशारे का। जी, और ये एक अच्छी खबर भारत के लिए, एकदम उछल पड़ी हैं लड़कियां ये।
1: जी, और ऐसी अच्छी खबर के साथ हम इस अपडेट का समापन कर रहे हैं। ठीक 1 घंटे बाद यानी 5:30 पर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। நமஸ்கார்
2: நேர்களே, கேட்டீர்கள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரத்தினை.

0: निर्भय
1: गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स. एशियन गेम्स की ताज़ा अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम. मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं अनुपम पाठक. और इस वक्त की अपडेट की शुरुआत फिर एक अच्छी खबर से. भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा कर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका सामना चीन से होगा.
2: बिल्कुल, और देखने लायक मैच होगा. और देखने लायक मैच तो ये भी था जो बस अभी अभी खत्म होगा. अगर आप पिछले एक घंटे से अधिक समय से हमारे साथ हैं तो आपको याद होगा अपनी पिछली अपडेट जब हम खत्म कर रहे थे, खत्म करने के कुछ सेकंड्स पहले ही गोल हुआ था, इशिका ने किया था. इसके पहले दो क्वार्टर्स यानी पहले दोनों क्वार्टर्स में दोनों टीमें एक दूसरे को आंकती ही रही थी. भारत ने प्रयास तो बहुत किए थे, कुल मिलाकर 9 पेनल्टी कॉर्नर पाए थे लेकिन एक में भी गोल नहीं कर पाए थे. कोरिया लगातार प्रतिरक्षण में, खासतौर से उनके गोली ने बहुत अच्छे सेव किए थे. लेकिन जो दूसरा हाफ है उसमें बिल्कुल कहानी पलट गई. भारतीय टीम ने तो ऐसे गोलों की झड़ी लगा रखी थी, आज सचमुच एक कांटे का मैच, उन्हें कांटे की टक्कर मिली. और जो तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ, हाफ टाइम के तीसरा क्वार्टर जब शुरू हुआ उसके बाद का जो हिस्सा है, हाफ टाइम पूरी तरह से भारत के नाम ही रहा. और 48वें मिनट में कप्तान सलीमा टेटे ने क्या शानदार फील्ड गोल किया. उन्होंने एक इंटरसेप्ट किया पास को और बहुत तेज़ी के साथ सर्किल में घुसी. सर्किल में घुसने के बाद तेज़ झन्नाटेदार शॉट लगाया, इतना तेज़ था कि एक रक्षक की स्टिक से टकरा कर डिफ्लेक्ट होकर वो गोल पोस्ट पर चला गया. और उसके पहले आज दीपिका का नाम

0: कॉर्नर में तो नहीं है, लेकिन जो पहला गोल हुआ था उसमें दीपिका ने जो पेनल्टी कॉर्नर लिया था, एक बड़ा अच्छा वेरिएशन किया उन्होंने, पुशर की ओर वापस बॉल को धकेल दिया था और वहां इशिका ने उस बॉल को पकड़कर चकमा दे दिया गोली को और पहला गोल भारत के लिए किया था। यानी भारतीय लड़कियां पहुंच गई हैं फाइनल में, अब बारी है भारतीय लड़कों की। और हम सबके मन में तो उम्मीद है, हॉकी तो हम उड़ते भी चाहते हैं, दो स्वर्ण पदक हमारा मन तो चाहेगा ही चाहेगा।
1: बिल्कुल, और दो ही क्यों, हमारा मन तो और बहुत से पदकों के लिए है। और ये 16 साल में पहली बार हो रहा है अनुपम के एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स हैं। लवली नाम महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में पहुंच गई है गोल्ड मेडल बाउट में, और इसके पहले परवीन हुडा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में, और पुरुषों में अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली थी। तो कम से कम 3 सिल्वर मेडल पक्के हैं।
0: बिल्कुल, और कांस्य पदक तो आए हैं, उनको तो गिनना भी है इसमें।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कुल मिलाकर बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछली बार लवलीना को सिल्वर मिला था, देखते हैं इस बार क्या अपने पदक का रंग बदलती है। आज की उनकी बाउट बहुत मुश्किल थी कहना चाहिए, बस किसी तरीके से उन्होंने इसको पार कर लिया है। अगली लड़ाई पूरी तरह से उनके नाम हो, हम सब की दुआ।
1: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में पुरुषों और महिलाओं की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पुरुषों ने कुवैत को हराया है 2-0 से। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई, और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा, और इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया, जिसमें तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह ने अपने अपने मैच जीते। महिला टीम का सेमीफाइनल मुकाबला हांगकांग से होगा।
0: यानी इसमें भी दो पदक हमारे पक्के हो चुके हैं। और खास तौर से स्क्वैश में मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, बल्कि सभी लोगों को लग रहा होगा, एक जो परंपरा होती है ट्रांजिशन की, आप याद कीजिए सौरभ घोषाल, दीपिका पलिक्कल और संधू, हरजिंदर सिंह संधु, इन लोगों ने कितना अच्छा खेला था। और अब जो नई पीढ़ी आ गई है, जिसमें हम अभय सिंह की बात करें, अनहत की बात करें और हम तन्वी की बात करें, ये सब कितने अच्छे तरीके से इस स्क्वैश की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और इसके साथ ही गोल्फ के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें वेमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के पहले राउंड में प्रणवी शरत दूसरे स्थान पर रही हैं। दीक्षा डागर, आदित्य अशोक और प्रणवी शरत की महिला टीम पहले राउंड में फिलीपींस के साथ संयुक्त छठे स्थान पर रही। वहीं सप्तक तलवार, वीर अहलावत और युवराज संधु की पुरुष टीम पहले दौर में फिलीपींस और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर रही है। भारतीय गोल्फर कल राउंड 2 के लिए वापसी करेंगे।
0: बिल्कुल, और यहाँ पर देखना होगा आदिति अशोक का जो अनुभव, हमारी सबसे अनुभवी गोल्फर वही हैं, अब वो कितना काम आता है, कितना आगे तक ले जा सकती हैं। अभी बहुत सारे खेल हैं जिनमें पदकों की पूरी पूरी उम्मीद है। आज की बात करें तो आज ज़रूर भारत के हिसाब से अगर देखें तो दिन लगभग समापन की ओर है। जितने भारतीय खिलाड़ी थे उन सब की स्पर्धाएँ लगभग पूरी हो गई हैं, और दिन बहुत अच्छा रहा है। 3 स्वर्ण पदक तो आर्चरी से आए, क्या बात है, आज का दिन भला कौन भूलना चाहेगा। और इसके अलावा शूटिंग में नीरू ने एक बार फिर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा काइनन के साथ।
1: बिल्कुल, एक स्वर्णिम दिन रहा है भारत के लिए। और इसके अलावा ट्रैक साइकिलिंग में, लेकिन विमेंस केरिन के फाइनल मुकाबले में भारत की कीर्ति रंगास्वामी चेक्का चौथे पर रही, और मेंस स्प्रिंट में रेपेशाज में भारत के डेविड बेकहम, एल्काथो जुंगो और रोनाल्डो सिंह लाइतोंजाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं।
0: तो आपको ये बताते हुए कि 1 घंटे बाद 6:30 बजे हम फिर होंगे आपके साथ। मुदिता के साथ अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: நேர்களே, கேட்டீர்கள், ஜப்பானில் நடைபெறக்கூடிய 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரத்தினை.

0: நேர்களை தொடர்ந்து நம்ம கேட்கலாம் ஜப்பானில் நடைபெற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய கள நிலவரம்.
1: Please stand by for the relay.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन भारतीय चुनौती के हिसाब से देखें तो लगभग अवसान की ओर है। लगभग सभी स्पर्धाएं पूरी हो चुकी हैं। बहुत शानदार दिन रहा है। ऐसा दिन जिसकी उम्मीद हर खेल प्रेमी करता है और हर खिलाड़ी करता है। बहुत ही शानदार दिन रहा है। लेकिन अभी एक मुकाबला चल रहा है टेनिस में। टेनिस में आज सुमित नागल ने अपना मैच जीत लिया है। इसके अलावा डबल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और यूकी भामरी हार गए थे। लेकिन यूकी भामरी अगर दो मैच एक साथ हो तो बीच में गैप देना होता है, इसलिए उनका मैच अब चल रहा है, इस समय ऑन है। क्या स्थिति है जानते हैं मुदिता से।
4: जी, टेनिस के मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का मुकाबला चाइनीज ताइपे के सु वेसिए और चुन सिन सिंह की जोड़ी से जारी है। और पहला सेट भारतीय जोड़ी 3-6 से हार गई है, लेकिन दूसरे सेट में अभी वो 1-0 से लीड कर रही है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मिक्स डबल्स में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। 2023 में ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने चाइनीज ताइपे को फाइनल में हरा कर खिताब जीता था।
3: तो शायद वो दास्तान इनके रैकेट में और दम भरेगी। वापसी अच्छी की है, देखते हैं क्या होता है। अगली अपडेट में हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन अब चर्चा है, जाहिर सी बात है पूरे देश में चर्चा है, हम एक बार बार बार करना चाहेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। 3 स्वर्ण पदक आए हैं आर्चरी में, यानी कि तीरंदाजी में। कंपाउंड की स्पर्धाएं थी, कंपाउंड में भारत जबरदस्त फोर्स बन चुका है। आज 3 स्पर्धाओं में भारत उतरा, 3 स्वर्ण पदक पाए और तीनों में डिफेंडिंग चैंपियन भी था।
4: जी बिल्कुल। और शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की है। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और कतर और चीन से आगे टॉप पर रही ये जोड़ी। ट्रैप शूटिंग में भारत का 3रा मेडल था। इसके पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अलावत और मनीषा कीर की भारतीय

0: ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया है। लेकिन शूटिंग में ही 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
1: और कुश्ती में भी बहुत अच्छी खबर आई है। आज कुश्ती में ग्रीको रोमन की स्पर्धा थी और महिलाओं में निशा थी। निशा 68 किलोग्राम भार वर्ग में रिपेचास में पहुंची थी लेकिन वहां पर परास्त हो गई। और ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम में भारत के सुनील कुमार वो जापान के ताइजो योशिदा से परास्त हुए। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दें रिपेचास होता क्या है। होता यह है कि अगर आप अपनी कुश्ती हार जाते हैं तो भी आपको मौका मिल सकता है। अगर आप जिससे हारे हैं वो बंदा अगर फाइनल तक पहुंचता है तो जितने लोग उससे हारे हैं उनके बीच में फिर से मुकाबला होता है और उनमें जो विजेता होता है उसको कांस्य पदक के लिए भिड़ने का मौका मिलता है। तो इसके चलते सुनील को फिर मौका मिला। निशा को भी था, वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सुनील ने तजाकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान ज़ादा को 9-0 से टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर आसानी के साथ परास्त किया और भारत को कांस्य पदक दिलाया।
0: जी, और बॉक्सिंग में भी भारत के लिए आज अच्छा दिन रहा। मुक्केबाजी में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया और 16 साल में अनुपम ये पहली बार हो रहा है कि एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर होंगे।
1: बिल्कुल, हम पिछले बार की बात करें तो पिछली बार 4 पदक थे। एक रजत पदक था लवलीना का जिसको सब लोग चाहेंगे। आज की बाउट बहुत बहुत मुश्किल थी उनके लिए। बड़ी मुश्किल से 3-2 के अंतर से वो जीत पाईं लेकिन स्वर्ण पदक में निशाना साधेंगी। बहुत अच्छी लड़ाई लड़ें। और इसके पहले 2023 की अगर हम बात करें, 22-23 में जो हुआ था, 22 के खेल 23 में हुए थे, प्रीति पवार को कांस्य पदक मिला था, निखत जरीन को मिला था, नरेंद्र बेरवाल को मिला था। लेकिन इस बार 3 तो हमारे फाइनल में ही खेल रहे हैं, यानी हमें पदक और मिलने हैं और 3 कांस्य पदक तो आ ही चुके हैं।
0: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में भी पुरुष और महिला दोनों टीम्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और साथ ही मेडल भी पक्का कर लिया है। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा, वहीं सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: और हॉकी की बात किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। अभी हॉकी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है और भारत का जो मुकाबला था दक्षिण कोरिया के साथ, भारतीय लड़कियों का ज़बरदस्त मुकाबला, हाफ टाइम तक तो बिल्कुल बराबरी पर था। लग रहा था इतने गोल ठोकने वाली भारतीय टीम क्या करेगी, इसमें इतनी बड़ी चुनौती मिल रही। लेकिन उसके बाद जो दूसरा हाफ था, यानी कि तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, उसमें भारतीय लड़कियों ने ज़बरदस्त खेल दिखाया। 2-0 से बढ़त हासिल की और इंशिका ने पहला गोल किया पेनल्टी कॉर्नर से। उसके बाद कप्तान सलीमा टेटे ने फील्ड गोल किया था। 2-0 से भारत जीत गया है। और हॉकी में कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उसकी चर्चा अगली अपडेट में।
0: जी, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। ठीक 7:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आज की अंतिम अपडेट 20वें एशियाई खेलों पर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी मुदिता के साथ। आज का दिन भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सबसे पहले वो खबर जो अभी तक रह गई क्योंकि ये मैच अभी तक चल रहा था। टेनिस में मिश्रित युगल में यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले ये भारत की ओर से खेल रही थी, बस अभी अभी मैच समाप्त हुआ है और इसमें भारतीय जोड़ी ने जीत हासिल की 6-3, 6-4 सीधे सेटों में। और अब बात करेंगे आज के दिन की। शानदार दिन रहा है, शुरुआत कैसी रही, किसने की, कौन कौन से पदक आए आपको पता है, लेकिन बार बार सुनना अच्छा लगेगा, मुदिता बताएंगी।
2: जी बिल्कुल अनुपम, और आज की सुबह ही शुरुआत हुई है स्वर्ण से, यानी स्वर्णिम सुबह रही है आज की, और ये हुआ था भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम की बदौलत। चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेंडम की भारतीय तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद कंपाउंड मिक्स टीम का गोल्ड मेडल भी आया, चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव ने उसे जीता। और तीसरा गोल्ड मेडल कंपाउंड आर्चरी में आया भारतीय पुरुष टीम का, जिसमें साहिल जाधव, कुशल दलाल और टी गणेश मणिरत्नम की तिकड़ी ने फाइनल में चीन को हराया।
1: जी, तीन से पेट नहीं भरता। तो चौथा गोल्ड मेडल आया शूटिंग से। शूटिंग में कल की जो हमारी हीरोइन थी कहना चाहिए, नीरू डांडा, उन्होंने आज अपनी जोड़ी बनाई अनुभवी काइनन चेनाई के साथ। और डबल ट्रैप में ये मिक्स स्पर्धा थी और इसमें इन्होंने क्या शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज 2 और 3, इन दोनों में 10 में 10 निशाने, कमाल की बात। कुल स्कोर इन्होंने बनाया 34, जो एशियन रिकॉर्ड है वो अभी इसी साल कुवैत ने बनाया था 30 का, उससे 4 ज़्यादा। और कुवैत इस बार भी था, वो दूसरे स्थान पर आया। आगे रही भारतीय जोड़ी, स्वर्ण पदक आज का चौथा।
2: और बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया गनगस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल बाउट में पहुंची। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को हराया। परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स पहुंचे हैं।
1: बिल्कुल, अब तक अगर हम पिछले गेम्स की बात करें तो कुल 4 पदक थे, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। इस बार 6 पदक होने, और देखना ये है क्या बात है, अगर 3 स्वर्ण हो जाए तो क्या कहना, भारतीय झोली बहुत बड़ी हो जाएगी। किस्मत अगर मौके दे तो उसको पूरी ताकत से भुला लेना चाहिए, ये साबित किया सुनील ने आज ग्रीको रोमन कुश्ती 87 किलोग्राम भार वर्ग में, जहां पर वो हार गए थे, लेकिन चूंकि उनके विपक्षी फाइनल में पहुंचे तो उनको एक मौका

0: और मिला रिपचैस में, जिसको भुनाते हुए उन्होंने आखिर में तजाकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान सोदा को 9-0 के स्कोर से परास्त किया टेक्निकल सुपीरियरिटी में, और भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया, आज का तीसरा कांस्य पदक।
1: जी बिल्कुल, और स्क्वाश में भी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के साथ ही मेडल भी पक्के कर लिए हैं। कल उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा, पुरुष टीम का होगा मलेशिया से और महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
0: और हॉकी के बिना बात अधूरी रह जाएगी, हॉकी जो हमारे साथ खून का रिश्ता है जिसका, हॉकी में भारतीय महिलाओं ने भी गजब किया है। पिछली बार उनका कांस्य पदक था, इस बार वो फाइनल में पहुंच गई हैं। शानदार, इस बार गोलों की झड़ी लगाई थी आज, लेकिन वो झड़ी तो रुकी लेकिन जीत का सिलसिला नहीं। पहले दोनों क्वार्टर बिना गोल के रहे, लगा बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि पेनल्टी कॉर्नर 9 कमाए थे लेकिन उसको गोल में बदल नहीं पाई थी। लेकिन तीसरे क्वार्टर के ख़त्म होते होते भारत ने जो बढ़त हासिल करनी शुरू की, सबसे पहले इंशिका ने गोल किया पेनल्टी कॉर्नर से, बिल्कुल नए वेरिएशन के साथ गोल हुआ था, बस देखने लायक था ये। और उसके बाद सलीमा टेटे ने बस 4 मिनट बाद एक फील्ड गोल, शानदार फील्ड गोल किया जो डिफ्लेक्शन के साथ चला गया गोल पोस्ट के भीतर। भारत 2-0 से इस मैच को जीत लिया। 2 अक्टूबर के दिन फाइनल मैच, भारत के स्वर्ण के लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए।
1: जी बिल्कुल, लड़कियों ने स्वर्ण के लिए अपनी छलांग लगा दी है। अब कल बारी है मेंस हॉकी टीम की, जो सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करेगी। एक और सेमीफाइनल कल खेला जाने वाला है क्रिकेट का, मेंस क्रिकेट का, जिसमें भारत का सामना होगा श्रीलंका से।
0: तो कुल मिलाकर आज बस यहीं तक, अब आज के अपडेट तो समाप्त होते हैं, लेकिन कल हमारे साथ रहना मत भूलिएगा। कल सुबह 9:30 बजे हम लोग फिर आपके साथ होंगे।
1: जी, और उसके पहले आज रात 10 बजे हमारा डेली अपडेट का कार्यक्रम, जिसमें हम पूरे दिन का लेखा जोखा आपको देंगे भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स, उनके अचीवमेंट्स, उनके प्रदर्शन के बारे में, वो सुनना मत भूलिएगा। और कल सुबह 9:30 बजे हम फिर से आवरली अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तो अब मुझे यानी मुदिता और अनुपम पाठक को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: கேழ்மணி 35 நிமிடங்களில் மீண்டும் இணைகின்றோம் ஆகாஷவாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் எஃப்எம் ரெயின்போ 102.6. அறிவியல் தகவல்களில் இன்றைக்கி நாம் அந்த பருவநிலை மாற்றங்கள் அப்படிங்கிற கிளைமேட் சேஞ்சஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம். அது தொடர்பான ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு, உள்ளூர் அளவிலான மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்முடைய தாமிரபரணி ஆற்று நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழைப்பொழிவின் போக்கில் வந்து 1971 முதல் 2000 வரைக்கும் ஏற்பட்டுள்ள அந்த மாற்றங்களை வந்து சிவப்பிரகாசம் அப்படிங்கிறவர் தலைமையிலான குழுவினர் வந்து ஆய்வு செஞ்சு வெளியிட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் உள்ள 14 மழைமானி வானிலை தரவுகளை திரட்டி நடத்திய ஆய்வில் வந்து பாபநாசம் முதலான மேற்கு பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு அதிகரித்துள்ள அதே சமயம், தாமிரபரணி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கிழக்கு வடக்கு பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு குறைந்து வருது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது பருவநிலை மாற்றத்தை கணக்கில் கொண்ட முன்னோக்கு திட்டமிடுதல் நம் உடனடி தேவை அப்படின்னும் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. தாமிரபரணி பகுதியின் கிழக்கு வடக்கு பகுதிகளில் தற்போது மழை வரத்தும் கூட மிகப்பெரிய மாற்றத்தை வந்து சந்திச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.

0: खेलों का इतिहास पुराना है, लेकिन कुछ खेलों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि, और अब
1: लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया, लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
2: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानी पार्थी और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की 3 टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
0: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का 4th स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
3: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का 3रा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
0: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी, आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
4: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा 3रा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, bahut zyada effort de rahe hain, bahut zyada training kar rahe hain, to kuch to positive aayega।
0: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी

0: दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया। पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज झन्नाटेदार शॉट लगाया, जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए, जबकि कोरिया को सिर्फ 3 मिले। और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां अब 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था, जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य। तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
1: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गई। वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
0: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौध ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वाश के सितारों की कहानी।
1: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
0: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपी की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपेई के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहां पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा, 6-6 की बराबरी पर, उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए। लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिंह से हार गए थे।

0: इन 6-4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3-6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दो ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़ के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
1: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगजो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गई।
0: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
1: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गईं। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
0: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेन्स टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधू 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर हैं। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
0: और अब बारी सेपक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल है। वही महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
0: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भांचने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
3: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ 5वें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ 4थे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ 3रे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ 4था स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड

जिसकी स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्त ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रही लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। किनों में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं।

0: राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
1: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
0: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय शेनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: मुदिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
2: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
3: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के दो बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे। सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: को-एंकर निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते निखिल, गुड इवनिंग अनुभा।
1: सबसे पहले हेडलाइंस अनुभा से।
0: थैंक यू निखिल। In Indian stock market, Sensex ends nearly flat. Nifty settles at 22,620. Cabinet approves MSP hike for Rabi crops in 2027-28. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब करीब सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ। निफ्टी 22,620 पर पहुंचा। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2027-28 में रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
0: एंड अ डिस्क्लेमर फॉर आवर लिसनर्स बिफोर वी बिगिन विद द मेन स्टोरीज। The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक यानी कि 0.42% नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। मासिक आधार पर सेंसेक्स इस महीने 5.8% लुढ़का जबकि निफ्टी 6% गिर गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक में कोई बदलाव नहीं आया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की तेजी दर्ज हुई। इससे पहले आज सुबह बाजार सपाट स्तर पर खुले क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्लोबल यील्ड को लेकर की चिंताओं के बीच निवेशक सतर्क रहे। सेंसेक्स ज्यादातर समय बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा जबकि निफ्टी में उतार चढ़ाव होता रहा। बढ़त बनाए रखने में असफल रहने के कारण कारोबार के आखिरी घंटे में दोनों सूचकांक नीचे आ गए।
0: Benchmark domestic equity indices declined for the third straight session today. The Sensex settled nearly flat, down by 49 points to close at 72,480. The Nifty fell by 96 points or 0.42% to settle at 22,620. On a monthly basis, the Sensex shed over 5.8%, while the Nifty was down 6% in September. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index remained unchanged, while the Small-Cap 100 Index rose 0.3%. Markets opened on a flat note this morning as investors remained cautious amid volatile crude prices and concerns over global yields. The Sensex stayed in positive territory for most of the session, while the Nifty swung between gains and losses. Failing to hold on to those gains, the indices edged lower in the final hour of trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल 2.3%, सन फार्मा 2.1% से ज्यादा और टाइटन 2% गिर गए। इसके विपरीत कोटक महिंद्रा बैंक 2.9%, आईसीआईसीआई बैंक 2.3% और इंडिगो 2% बढ़े।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged higher. Among the top gainers, Realty jumped 1.4%. Mid-small private banks rose 1% and BankEx added 0.7%. In contrast, hospitals tanked 5%, healthcare lost over 2.3% and consumer durables dropped over 1.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,232 companies declined. Shares of 2,144 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.
1: Nifty 50 mein छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को आज शामिल कर लिया गया है। और विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने जो भी अपने श्रोताओं को बताया कि निफ्टी 50 में छमाही समीक्षा के बाद विप्रो लिमिटेड को हटाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को शामिल किया गया, इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी दें, कैसे होता है ये?
2: नहीं देखिए, जो निफ्टी का 50 का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 50 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है और ये मान के चलें कि जो 12-13 सेक्टर्स की जो 50 का

कंपनियां वो सभी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज कह सकते हैं, और हर 6 महीने पे इसका एक बार जो है रिवीजन होता है इंडेक्स का, मतलब उसका एक रिवीजन होता है। नेसेसरी नहीं है कि कोई कंपनी निकले या आए, लेकिन उसको रिव्यू किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो 6 महीने का जो एवरेज फ्री फ्लोट शेयर्स का होता है, जो कि शेयर्स जो कि ट्रेडेबल है, फ्री फ्लोट शेयर्स का मतलब होता है कि शेयर जो खरीदे और बेचे जा सके, ना कि वो शेयर्स जो कि प्रमोटर के पास हैं, तो ऐसे शेयर्स जो कि ट्रेडेबल हैं, उसके बेसिस पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है उसके बेसिस पे ये फैसला होता है कि किसी कंपनी को बाहर ले जाना है या अंदर लाना है। और जो अंदर आने वाली कंपनी है उसका जो सबसे छोटी कंपनी, जो सबसे बाहर जाने वाली कंपनी, उससे कम 1.5 गुना मार्केट

0: का पार्ट होगा। और विप्रो जो है वो ऐसा स्वाभाविक है कि चूंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये
1: जी
0: सब चीज़ों का वो आया है, तब से उसके शेयरों में गिरावट भी आई, तो इस वजह से वो बाहर जा रहा है।
1: जी सिद्धार्थ, आज की शेयर बाजार की खबरों की अगर बात करें और उस पर आंकड़ों की हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि निफ्टी में 8 साल में सबसे खराब प्रदर्शन देखा गया और पिछले 25 साल में सबसे खराब सितंबर ये महीना गया, क्योंकि चूंकि आज इस महीने का आखिरी दिन है। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, क्या ये शेयर मार्केट में रिसेशन है या कुछ और है, या वैश्विक जो हमारी चिंताएं हैं, जो वैश्विक गतिविधियां हैं, उनका असर है, क्या कहेंगे?
0: नहीं देखिए निखिल, जहाँ तक जो शेयर बाज़ार में आज आजकल जो देखा जा रहा है, मैं कहूँगा पिछले कुछ समय से जो शेयर बाज़ार में दबाव है या जो वॉलेटाइल है शेयर बाज़ार, उसके मुझे लगता है जो ज़्यादा कारण है वो देश के बाहर से हैं, जो जैसे कि अमेरिका में आप जो देखेंगे, और अब खाली अमेरिका में ये सीमित नहीं है, चूँकि महंगाई सब जगह बढ़ रही है तो बॉन्ड यील्ड्स जो
1: जी
0: कि वो सब जगह बढ़ रही है, साथ साथ जो तेल की कीमतें हैं वेस्ट एशिया, जब से शुरू हुआ ये क्राइसिस अमेरिका और ईरान की जो युद्ध चल रहा है उसके बाद से, हमेशा से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 के आसपास के ऊपर हैं आज भी, तो वो एक बड़ा कारण है। वेस्ट एशिया जो मैंने बोला उसके वजह से जो अनिश्चितता आई है, सप्लाई डिस्रप्शंस हैं, वो एक कारण है। साथ में एक ये भी चिंता है, और हालांकि हम देख भी रहे हैं अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वहाँ
1: जी
0: का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ऑलरेडी महंगाई को देखते हुए इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है 25 बेसिस पॉइंट्स का, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हमारा रिजर्व बैंक भी शायद अपनी जो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा होगी उसमें हो सकता है इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ा दें। तो मुझे लगता है, और साथ साथ इसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं
1: जी
0: उन्होंने भी जो अभी तक बिकवाली है वो
1: जी
0: अभी तक बनी हुई है, उसमें मतलब रुकावट नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हमारी बाज़ार फिर भी मैं कहूँगा जो थोड़ी बहुत स्थिरता, जो स्थिरता हमें दिखती है काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले क्या होता था जब विदेशी निवेशक जाते थे तो बहुत तेज़ी से बाज़ार
1: बिल्कुल
0: गिरती थी, लेकिन इस अभी देखेंगे आप पिछले 2 सालों में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के रुपए के आसपास जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाज़ारों से निकला लाया। लेकिन उसके विपरीत जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं और
1: जी
0: डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने तकरीबन इसका डबल 4.5 लाख करोड़ के 5 लाख करोड़ के आसपास जो है भारतीय बाज़ारों में निवेश किया है। भारत की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि दुनिया में इतनी अस्थिरता है तो शायद
1: जी
0: उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है।
1: सिद्धार्थ, इट्स अ वेरी हार्टनिंग थिंग दैट यू सेइंग दैट यू नो आर डोमेस्टिक आर इकोनॉमी द इंडियन इकोनॉमी इज एक्ट you know quite stable when you look at whatever is happening around the world, the when you look at the global economy. But at the same time, like you said, that there's been volatility in our markets, whatever may be the reasons. So I want to ask you one question, that for the investors who probably want to are looking for other avenues for investment in terms of equity investment, so would you say that right now, like the US markets are doing pretty well comparatively, what are the options for domestic investors? Can they move out? Can they invest in markets overseas? If so, how can they do it?
0: See,
1: and is it advisable also?
0: See, Anubha, in my view, it's not very easy to track every market,
1: right,
0: especially the overseas market.
1: Hmm.
0: Yes, you are absolutely right that if you look at markets outside, US markets have done fairly well. Even Kospi has done well. South
1: yes.
0: Korean market has done well. So there are other markets also where, yes, investors are getting good money. But I would say for our domestic investors, especially for retail investors, they should have faith in the Indian markets.
1: Right.
0: Because our, as I said earlier also, our economic fundamentals are completely sound. So there is nothing to worry. Yes.
1: This is not to take away from our domestic market or our indices. It's like in addition to that.
0: Yo, I agree. But yes, you can obviously hedge your
1: bets.
0: Yeah. But in a way, I would say for a retail investor, it's not very easy to track every market. And every market requires different kind of mindset and knowledge. Sphere. So I would say stay put in our markets, but I would say also, plus it's always my view, like if you want to invest in markets, as we say, people do through mutual fund, through a systematic investment plan. If you are investing in the markets directly, also follow SIP approach. Don't go very gung-ho. Do it at a very slow pace, slow and in small tranches. So, but I would say good times, because markets are falling, they're giving you an opportunity to buy.
1: An entry point also for those who want to, spare the money and maybe invest in better blue chip companies. Right.
0: Absolutely.
1: What about the GIFT City route for investment?
0: GIFT City route is also good. I wouldn't say that's a bad, because that's obviously you're getting

0: And you can invest staying in India, you can invest in overseas indices. So that's a good option for Indian retail investors or even other investors to go and invest in the GIFT City.
1: Right. But I think the crux of the matter here is, like you said, trust, have faith in your own economy. Our markets are doing pretty well. And I think the most important thing, remain calm and patient.
0: Yeah, what I'm trying to say is, yes, markets are getting impacted and that's happening.
1: Yes.
0: But don't lose hope. There's nothing to worry. There's nothing has happened in India to which our markets are reacting.
1: Right.
2: Siddharth, एक छोटा सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा. अगर आंकड़ों की हम फिर से बात करें तो लगभग 1000 से अधिक अंकों की दो दिन में गिरावट हम देख रहे हैं. इतनी तेजी से गिरावट आ रही है, क्या लगता है कि जब मार्केट संभलेगा तो इसी तेजी से हम संभलते हुए दिखाई देंगे?
0: देखिए निखिल, हो क्या रहा है कि जो अनिश्चितता है वो काफ़ी हद तक अब निश्चित हो गई है और दिनों दिन चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं. चाहे वो अमेरिका और ईरान का युद्ध हो, वो ईरान की तरफ से रोज़ समझौते की बात आती है लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ और, उनकी तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आता है, उसमें और नए नए एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता बढ़ रही. साथ ही साथ मैं आपका जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने एक दो अभी कुछ दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया कि जो सप्लाई शॉक्स हैं या जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं उनका इंतज़ाम करना भी आसान नहीं है. उनको फ्रेट, उनको लाना फ्रेट और साथ साथ उनके इंश्योरेंस, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अनिश्चितता और चैलेंजेस आ रहे हैं. तो आने वाला समय और अनसर्टिनिटी वाला हो सकता है. साथ साथ आप देखेंगे सप्लाई डिसरप्शन की वजह से मेटल की प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अनिश्चितता इतनी ज़्यादा है, उसका कहीं ना कहीं बाजार पर भी असर पड़ रहा है.
2: जी, आगे बढ़ते हैं. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. नई दिल्ली में इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिलाने के लिए लिया गया है. उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के लिए 675 रुपए प्रति क्विंटल की गई है. इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
3: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे. आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं.
2: केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की योजना को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल भारत के अंतर्राज्यीय परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी. इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संभव हो सकेगा. सिद्धार्थ, ऐसे समय में जब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, ग्लोबली भी और इंटरनेशनल भी, साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर भी कई सारे असर देखे जा रहे हैं. ऐसे में इस तरह के फैसले लेना, आपको क्या लगता है कैसा निर्णय है ये, किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी?
0: नहीं, जहाँ तक कैबिनेट का ये फैसला है एमएसपी का, ये मुझे लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है, जब से वो प्रधानमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो तब से हमने इस बात पे खास ध्यान दिया है कि जो एमएसपी हो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे सरकार किसान से उसकी उपज खरीदती है, उसको कम से कम, जैसा मंत्री जी ने भी बोला कि 50% कॉस्ट प्राइस के ऊपर एमएसपी रखने का हमने एक निर्णय लिया और उसको हम आज तक मेंटेन कर रहे हैं. और इसका, इसमें सबसे बड़ा कारण है ना केवल अनाज, ना केवल रबी में जैसे खासकर गेहूं होगी जो क्रॉप, केवल उसके लिए नहीं, साथ साथ जो दलहन है, जो दालें हैं और उसके साथ साथ तिलहन, क्योंकि ये दो ऐसे आइटम्स हैं जिस पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है. हम चाहते हैं कि किसान डाइवर्सिफाई करें, केवल चावल या धान या गेहूं से हट के दलहन और तिलहन की तरफ जाए, क्योंकि ये हम भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं. तो मुझे लगता है जो आज जो एमएसपी जो अनाउंस की है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को इस बात का श्योरिटी मिलेगी कि जो वो जो उनकी लागत है उसकी भी वसूली होगी, उससे कहीं ज़्यादा उनको आज एमएसपी अनाउंस की गई है.
1: एंड सिद्धार्थ, आई थिंक रिपल इफेक्ट ऑफ दिस वुड बी होपफुली अ बूस्ट इन रूरल डिमांड एज वेल वंस द एमएसपी, यू नो, this is implemented.
0: Yeah, Anubha, because there has been pressure or uncertainty surrounding, especially because of the El Nino effect and the monsoons, which have now more or less covered the entire country, but still, so because of that uncertainty also, I think announcing MSP

0: between the government and trade bodies would help evolve a practical and sustainable framework to further strengthen India's digital economy. Let's move on to the next story. India registered manufacturing sector recorded strong growth in financial year 2025, with industrial output rising 7.81% and total employment increasing about 7.2% over the previous year. According to the annual survey of industries data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today, the total number of establishments in this sector increased from 2.6 lakh in financial year 24 to 2.67 lakh in financial year 25, representing a growth of 2.64%. Meanwhile, total emoluments paid to the workforce also increased by over 12% in 2024-25 on an annual basis. Siddharth, a very brief comment in this increase in the manufacturing sector.
1: I think manufacturing from day one has been the focus of this government, and I think that is why we have launched product-specific manufacturing initiatives also. And one of the glaring examples or the examples of big success is mobile phones, where we are exporting exponentially. There is a rise in exports from India, and also mobile phones which are manufactured in India. Same way electronics, electrical equipments, and government of the day is heavily pushing on this. Now another example is semiconductors, which we would soon start seeing that India emerges as one of the biggest players in semiconductors. So I think that's a big initiative. And also, why focus on manufacturing? Because that is the place from where we would get large scale employment.
0: Right.
2: एशियाई बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 1.9% से ज्यादा ऊपर चढ़कर, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी आधा प्रतिशत नीचे आकर बंद हुआ।
0: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today amid stalled talks between the US and Iran aimed at ending the West Asian conflict. Brent crude was trading 0.4% up at $103.05 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.3% higher at $90.52 per barrel when reports last came in.
2: सिद्धार्थ, ये जो हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि क्रूड ऑयल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, और आपने खुद बोला कि एक उबाल सा देख रहे हैं, ऐसे में इस तरह की खबर आना कहां तक हमें किस तरह की स्थिति में ले जा रहा है? और अभी हमने देखा 28 सितंबर को $108 तक भी पहुंच गया था।
1: नहीं, और अगर आप हिंदुस्तान की जो हमारी इंडियन क्रूड बास्केट है जो हम कंज्यूम करते हैं, वो तकरीबन $114-$120 प्रति बैरल के आसपास है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये, और क्योंकि हम 90% अपना जो है एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो मुझे लगता है ये चिंता का सबब है, और ये ऐसे समय पर हो रहा है जब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हॉर्मूज़ या सऊदी अरेबिया का जो प्रोडक्शन है और जो अब आ रहा है बाज़ार में, वो काफ़ी तेज़ी से प्री जो जब युद्ध शुरू हुआ था ऑलमोस्ट उस लेवल्स पर पहुँच रहा है, उसके बावजूद ये तेजी बनी हुई है, तो ये थोड़ा चिंताजनक है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अभी सप्लाई एकदम से बढ़ी है, तो हो सकता है उसका कुछ कीमतों पे असर पड़े।
0: और बढ़ते हैं
2: आगे बढ़ते हैं। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% बढ़कर 1,47,888 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट्स के अनुसार चांदी की कीमत आधा प्रतिशत गिरकर 2,20,435 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, अभी सोने के दाम जिस तरह से उतार चढ़ाव हम इसमें देख रहे, एक स्थायित्व तो नजर नहीं आ रहा, फिर भी ये भी सुनने में आता है कि सोने के दाम और लगातार तेजी से बढ़ेंगे?
1: नहीं निखिल, अभी तो थोड़े से दाम नीचे आए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी लेवल के आसपास जो है ट्रेड करेगा गोल्ड अभी फिलहाल, और उसकी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स वो किस स्तर पे रहती या किधर जाती हैं, साथ साथ क्रूड ऑयल का क्या होता है और डॉलर की जो वो है वो कितना मजबूत और होता है, तो वो शायद दिशा तय करेंगी। लेकिन मुझे लगता है $400-4100 पर आउंस के आसपास का मुझे लगता है सपोर्ट अभी भी है, उससे नीचे मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी भी सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं, और हमारे यहाँ तो त्यौहार का मौसम आ रहा है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो लोग अभी घरों में सोना बहुत बड़े पैमाने पे त्योहारों में खरीदा जाता है।
0: सिद्धार्थ, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। यू नो, वी हैव सीन कॉमन विजडम सेज दैट व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज, यू नो, गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड एंड सिल्वर बिकम्स अ सेफ हेवन एंड सो वन एक्सपेक्ट्स। बट टुडे ऑफ कोर्स वी सी दैट एज ऑफ नाउ द प्राइसेस हैव गॉन अप, बट इन द पास्ट वी हैव बीन सीइंग अ वेरी क्विक कमेंट दैट द prices are coming down. Do you see it as a good thing for bullion? Very quick comment.
1: See, I don't see it in a basically the price

0: The bond yields are hardening, so that is the reason for their immediate coming down. So that right. is the only reason.
1: Siddharth, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार.
0: आप दोनों को भी धन्यवाद.
2: And before we end, look at the headlines in Indian stock market. Sensex ends nearly flat. Nifty settles at 22,620. Cabinet approves MSP hike for Rabi crops in 2027-28, and global crude oil prices rise. And that's it in this program. For now, goodbye and namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முஹம்மது ஜுபேர். केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई।

0: है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना के वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि नीलामी से व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलने, निवेश आकर्षित होने और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय ने परिधान, कपड़े और वस्त्र उत्पाद के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्क में छूट योजना को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। योजना के तहत मौजूदा दरें और दिशा निर्देश पहले की तरह ही लागू रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में इस योजना से 15,400 से अधिक निर्यातकों को लाभ मिला। मंत्रालय ने कहा कि योजना बढ़ाए जाने से निर्यातकों को नीतियों में स्थिरता और स्पष्टता मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at ₹675 per quintal, followed by rapeseed and mustard at ₹413 per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by ₹390 per quintal, barley by ₹136 per quintal, gram by ₹83 per quintal and wheat by ₹25 per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism.

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया है कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा

0: शिक्षा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी 2026 को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज हुआ है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा है कि नीलामी से व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलने, निवेश आकर्षित होने और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में आगामी रबी सीजन को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में किसानों को समय पर गेहूं के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए परिवहन भाड़ा दरों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रसंस्करण केंद्रों से प्रदेश के 80 से अधिक वितरण केंद्रों तक बीज पहुंचाए जाएंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet yesterday also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये और चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। दिल्ली में इस वर्ष सितंबर महीने का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में सबसे कम दर्ज कर लिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष सितंबर में दिल्ली का मासिक औसत AQI 102 रहा, जबकि 2000

0: 2025 में ये 105 था। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक की अवधि में दैनिक औसत AQI 200 से कम रहने वाले दिनों की संख्या पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कल इंडिया कुवैत मीडिया कनेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कुवैत में मीडिया के साथ भारत के संबंध और बातचीत को बढ़ाना है। इस पहल का विषय है साझेदारी, विचार और संभावनाएं। इसके जरिए कुवैत के मीडिया को भारत, भारतीय दूतावास की गतिविधियों और भारत कुवैत संबंधों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारत की तकनीक, डिजिटल क्षेत्र, आर्थिक विकास और नई उपलब्धियों के बारे में भी सूचित किया जाएगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 233 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली। दोनों ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए 255 रन की साझेदारी की। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, "The decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce." He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet yesterday also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in

0: கேட்டு அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது இன்றைய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे. श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे. इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे. वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे. उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा. मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था. उस फैसले को इसमें लागू किया गया है. वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP.
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है. सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है. श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2027-28 मंडी सीजन के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की. बैठक में कॉलेजों और आसपास के इलाकों में छात्राओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई. उपराज्यपाल ने कॉलेजों के आसपास स्ट्रीट लाइट, CCTV और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए. सभी कॉलेजों में एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने

0: ஹிமங்சு பிஸ்வாஸ் அவர்களின் புல்லாங்குழல் இசை, டியுலால் ராய் அவர்களின் ஜலதரங்க இசை ஆகியவை கேட்டோம். எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निर्माणाधीन 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विशेष गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। परीक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की पहचान करना है जिसमें समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, बाईपास और 4 और 6 लेन वाली सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं।

तालिका में भारत 10 स्वर्ण 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमेंस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। जापान एशिया खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2 शून्य की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे, कर्नाटका के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will